0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन FM 101.2 MHz
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन FM 101.2 MHz
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो
3: तथा ध्वलामय अफसेट प्रेस सोलु दुतुन्न नगरपालिका ५ सोलु कुम्बु

0: टोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हाम्रो अभियान
1: संचय सूर्य एफएम स्टूडियो टाइम
2: एम बिहार को 10 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारा माई ऑफसेट प्रेस सोलु दुकुन नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू

0: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड की मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को मिलन चेतना
1: होंडा का विशेषता
2: जापानीज उच्च प्रविधि उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ र भरपर्दो
2: अफ रोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लंच भइरहेको
2: सब उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी
1: हाम्रा सेवाहरू
2: ओखलढुंगा र खोटाङको दिक्तेल बजारबाटै फाइनान्स को सुविधा सहित होंडा का सबै मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जुनसुकै मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइनु का साथ ही सर्विसिंग सेवा
2: एक्सचेंज को सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निःशुल्क दिइने
1: अनलाइन बाट बुकिंग गरी भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ
2: ओखलढुंगा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिचरण नगरपालिका 11 गुरुमारे भुजाङ ओखलढुंगा
1: सम्पर्क नम्बर 0375902222 9852988002222 र 9842880300

0: रेडियो एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: संचेत सूर्य एफएम स्टूडियो टाइम
2: टेलीफोन मध्यान को 12 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारा माई ऑफसेट प्रेस सोलू दुतु नगर पालिका 5 सोलू

0: Raio Rádio Luz, todo é tempo.
1: Fundo FM, 101.2 MHz. Ujjwal Bhavishyako Lagi, Hamro Abhiyan.
2: Sanche. Sony FM, Studio Time.
3: It's 2 p.m. New support D-Vajir.
1: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारामाई ऑफसेट प्रेस सोलू दुतुन नगर पालिका 5 सोलू कुंभू।

उसका वो संस्कृति की वो मान्यता सबके विशेषज्ञ आजकल आत्मता यति कार्पेट नै हो विगत तीन दशकदेखिको सुन्दर साथ यति कार्पेट किन्दा कार्पेटको पछाडि यतिको लोगो हुन नबिर्सिनुहोला यति कार्पेट कार्पेटको शहनशाह

मछेरी को दाने चुको दही होला कि मैं छा मछेरी को दाने चुको दही होला कि मैं छा गीतांगे को छोरू मत।

0: 才华就理所努FM 不烦
1: सोनु FM 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
2: सन्चे सोनु FM स्टुडियो टाइम
3: 3 PM दिउँसोको 3 बजे
1: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोनू दुतुन नगरपालिका 5 सोलुखुम्बु

0: todo esto? ¿Es en serio? ¿Quién me manda tantos mensajes? Ok, tengo que chequear esto. ¡Oh, sí! ¡Powerball!
1: No, ¿hasta marcaré que no le hago? ¡Fair, bíjole que puedo usar esa! ¡Eh, Kanchi! ¡Zada, pasar que eres bíjole que puedo leer esa! ¡Ah, Didi! ¡Chinko, chin, que me recoso el sapno! ¡Ramro, original bíjole que está a manar un quino por ahí! जहाँ पाए कहीं बटा लाऊंगा इससे डुप्लीकेट हुन्छ त ओरिजिनल बिजुली का सामान किन्न त ओ सल्लेरीको वर्षा इलेक्ट्रोनिक्स मा जानु पर्छ के तपाई घर तथा अफिस को लागि बिजुली को राम्रो क्वालिटी को सामानहरु खोज्दै हुनुहुन्छ यदि क्वालिटी को इलेक्ट्रोनिक सामानहरु लिन चाहनुहुन्छ भने सोलु दुतकुण्ड नगरपालिका पास सल्लेरीमा रहेको वर्षा इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड सर्भिस सेन्टरमा सम्पर्क राख्नुहोस् यहाँ विभिन्न ब्रांड का गुणस्तरीय बिजुली का संपूर्ण सामान सर्विस केबल मल्टीप्लग पावर सकेट लिस्टी अर्थिंग को तार अर्थिंग रड अर्थिंग केमिकल उपलब्ध छ साथ ही एलसीडी एलईडी टीवी साउंड सिस्टम कंप्यूटर लैपटप हाउस वायरिंग का सामान चार्ज वाला टॉर्च लाइट तथा इलेक्ट्रोनिक सामान होलसेल मूल्य में पाइन चट्यांग पड़े जले का संपूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामान मरम्मत कर
2: डिफ्रिज फ्रिज एसी पाउनका साथै मरम्मत पनि गरिन्छ
1: प्रोपाइटर अजय पञ्चियार सम्पर्क नम्बर 9809599

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: Soundcheck. Studio FM. Studio time.
2: It's 4 p.m. Antaranna ko 4 baje.
0: टाइमचेकको साथमा न्यू स्टार डिजिटल कलर ल्याब तथा ध्वलामय अफसेट प्रेस सोलु दुतुन्न नगरपालिका 5 सोलु खुम्बु

0: नागरिक सहायता कक्ष संचालन होने संबंधी सूचना
1: अदालत व गृह महानुभाव यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रवाहन सेवा प्राप्ति को सहजीकरण के लिए नागरिक सहायता कक्ष संचालन कर उक्त कक्ष निःशुल्क सेवा प्राप्त कर सकने सेवा प्राप्ति को नागरिक सहायता कक्ष में संपर्क राख् अनुरोध कर सेवा प्राप्ति में कति को प्रलोभन नगरी आपको सेवा लिना हार्दिक अपील करद सेवा प्राप्ति में कने गुनासो आए में गुनासो सुनने अधिकार कार्यालय प्रमुख सोझी संपर्क राख् सकने
0: कोशी प्रदेश सरकार आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय

0: सोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: संचय सोलु एफएम स्टूडियो टाइम
2: 5 PM
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतुन नगर पालिका 5 सोलु कुंभ
3: सदैभरी रोजे
2: डिस्काउंट खोज्दै

0: సాక్షివాయి భజనలో నేపాల్ సర్కార్ విజ్ఞాపన్ బోర్డ్
1: बाटा बचौ र बचाऊ यौनचन्य हिंसा सामाजिक अपराध हो। बाल बालिका यौनचन्य हिंसा को जोखिममा हुन सक्छन्। हिंसा छिमेकी आफन्त साथीभाइ परिचित नातेदार र जोसुकीबाट हुन सक्छ। अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीको व्यवहार ख्याल राखौं। बाल बालिकाको चालचलन पानी बेहोरा अस्वाभाविक परिवर्तन आएको हुन सक्छ। त्यस्तो पाइए उनीहरूसँग तत्काल कुरा गरौं। बाल बालिकासँग नियमित सम्वाद गर्ने गरौं।
2: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय उत्तर प्रदेश द्वारा जनहितमा

0: नागरिक सहायता कक्ष संचालन होने संबंधी सूचना अदली सेवा ग्रहण महानुभाव यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रवाहने सेवा प्राप्ति को सहजीकरण को नागरिक सहायता कक्ष संचालन कर उक्त कक्ष निःशुल्क सेवा प्राप्त कर सकूने सेवा प्राप्ति को नागरिक सहायता कक्ष में संपर्क राख् अनुरोध कर सेवा प्राप्ति में कसई को प्रलोभन नगरी आपको सेवा लिना हार्दिक अपील करद सेवा प्राप्ति में कने गुनासो आईन गुनासो सुनने अधिकार कार्यालय प्रमुखसंग सोझे संपर्क राख् सकूने कोशी प्रदेश सरकार आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय विराटनगर
1: राई को साझा स्टोर में दीदी ने कपड़ा अर्डर करू मत एक्ल भे जाऊ न मेरे साथी
2: मैं राई को साझा स्टोर सामने जान लगा नया नया डिजाइन का कपड़ा लिया अरे छानी छानी किन्ने आज
1: जाऊ
3: राई को साझा स्टोर्स में आउनुहोस् नया नया डिजाइन का कपड़ा सुपथ मूल्य में छानी छानी लै जानुहोस् यहाँ डाउन जैकेट सुमिकन जैकेट जूता चप्पल बच्चा देखि वृद्ध समयलाई जाडो र गर्मी दुवै मौसम में आवश्यक पर्ने फैंसी कपड़ा सुपथ मूल्य में पाइन प्रोपाइटर नारद मणि राई मोबाइल नंबर 9843909809 राई को साझा स्टोर स्थान जिला प्रशासन कार्यालय नजिकै सोलुखुम्बु नगरपालिका ५ सल्लेरी सोलुखुम्बु।

0: কল প্রিন্ট মধুকর্ক রকম তবাড়ি সাধন নম্বর একিন গড়ে সম্বন্ধে সূচনা আদরণীয় সেবাগ্রাহী মহানুভাবহরু তপাইলে আপনো সওয়ারী সাধনক বার্ষিক রূপমা বুঝাউনু পর্ने সওয়ারী কর নবীকরণ বস্তু লগায়ত অন্য কর সম্বন্ধী বিতরণ হেনকা লাগি সম্বন্ধিত यातायात কার্যালয়মা গৈর কর প্রিন্ট মাগ্ন ব্যাংক ভৌচার গর্ন অগি সওয়ারী কর তথা বস্তু একিন গর্ন তথা কর বুঝাইপছি প্রাপ্ত হুনে বিমা আফুলে বুঝাই করকো রকম আফু সওয়ারী নম্বর একটি গর্ন হওয়া এসেই সূচনা মারফত অনুরোধ গরিছ।
1: কোশী প্রদেশ সরকার আন্তরিক মামলা তথা কানুন মন্ত্রণালয় বিরাটনগর।
2: আজ তো তিমি ধীরে মলিন থাকি দেখিছ নি কি ভয়?
3: উসলে আজ ফেরি গালি করে পয়সা পনি দিয়ে না মোবাইল পনি খোসি।
2: ওহো দিদি, কুটনো মাত্র হিংসা হইন, গালি গর্নু, দর দেখাউনু, পয়সা নিয়ন্ত্রণ গর্নু, ই সবাই ঘরেলু হিংসা হন।
3: ওর মনে তো সোচেকই থিয়ে না, ই তো ঘর ভিতরকার সামান্য কুরা হলাম ভনের
2: আইন নি। ঘরেলু হিংসা ভানেকো ঘর ভিতর ওয়া নজিকো সম্বন্ধমা হুনে কুনে পনি প্রকারকো দুর্ব্যবহার হো। এসমা শারীরিক হিংসা, মানসিক হিংসা, ভাবনাত্মক হিংসা, यो हिंसा सबै पर्छन्। मोबाइल नियन्त्रण गर्नु, आवत जावत रोक्नु पनि निजी कुरा होइनन् नि, घरेलु हिंसा हुन्, अपराध हुन्।
3: त्यसो भए अब म चुप बस्दिन, सहायता खोज्छु।
4: घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐन 2066 ले हिंसा गर्नेलाई जरिवाना र कोही दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। हिंसा गर्नेले 3,000 देखि 25,000 सम्म जरिवाना वा 6 महिनासम्म कैद भोग्नु पर्छ। दुर्व्यवहार दोहोरिएमा सजाय दोब्बर हुन्छ।
5: हिंसा सहनु पनि अपराध हो। हिंसा भएको छ भने नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिनुहोस्। उजुरी गर्दा दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकिन्छ।
4: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
0: मौसम सम्बन्धी सही सूचना प्राप्त गरौं, सुरक्षित भविष्य निर्माण गरौं, मौसम तथा जलवायु सम्बन्धी सूचना लिने र दिने गरौं, मौसम पूर्वानुमानको जानकारी नियमित रूपमा लिने गरौं, प्राकृतिक विपद जोखिम न्यूनीकरणमा सचेत बनाऊ, जलवायु परिवर्तनका असर घटाउन सामूहिक प्रयास गरौं, वन संरक्षण वृक्षारोपणमा सक्रिय सहभागिता जनाऊ, ऊर्जा बचत र स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढ़ाऊ, वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणमा जिम्मेवार बनाऊ, वातावरण संरक्षण गरौं, जीवन रक्षा गरौं।
6: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेशद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
7: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय हुंडा ब्रांड की मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को मिलन चोकमा।
8: हुंडा का विशेषता
9: जापानीज उच्च प्रविधि उत्पादित
8: उत्कृष्ट माइलेज,
9: राम्रो रिसेल मूल्य,
8: टिकाऊ र भर पर्दो,
9: अफ रोड का लागि पनि उपयुक्त,
8: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लंच भइरहेको,
9: सबै उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी।
8: हाम्रा सेवाहरू
9: ओखलढुंगा र खोटाङको दिक्तेल बजारबाटै फाइनान्सको सुविधा सहित हुन्डाका सबै मोडलका मोटरसाइकल तथा स्कुटरहरू कम्पनीको मूल्यमा पाइने,
8: जुनसुकै मोडलका जेन्युइन पार्ट्स पाइनुका साथै सर्भिसिङ सेवा,
9: एक्सचेन्जको सुविधा सहित मोटरसाइकल तथा स्कुटर खरिद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्भिस सेवा निशुल्क दिइने,
8: अनलाइनबाट बुकिङ गरी भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरीको सुविधा समेत रहनेछ।
9: ओखलढुंगाको लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्भिस प्राली, सिद्धिचरण नगरपालिका 11, गुरुमारे भुजाङ, ओखलढुंगा।
8: सम्पर्क नम्बर 037590222, 98528800222 र 98428300।

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: Time check. City FM. Studio time.
2: It's 6 p.m. Saturday, 12 bajyo.
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारा माई ऑफसेट प्रेस सोलू दुतकुंड नगर पालिका 5 सोलू कुंदू